0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं। ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं। गायक और संगीतकार हरिहरन की आवाज में समाप्त कीजिए खुमार बारा बनकवी का ये कलाम।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: शायर इब्राहिम अश्क का कलाम समात फरमाए तलत अजीज की आवाज में, मौसकी है फिदा हुसैन की।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिट्टी

0: हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: धनक घटा कलिया और तारी हैं तेरे रूप, गजलें हो या गीत मेरे सब में तेरा रूप। कार्यक्रम की अगली गजल आपको सुनवाते हैं पंकज उदास की आवाज में, शायर हैं कतील शिफाई।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह।

साथियों, कार्यक्रम की अगली गैर फिल्मी रचना सुनिए गायक और संगीतकार लक्की अली की आवाज में। गीत को लिखा है असलम ने।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुना जाए अनामिका की आवाज में गैर फिल्मी गीत। इस गीत को लिखा है राजीव आनंद ने, संगीत है एडविन फर्नांडिस का।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: कार्यक्रम में अगली आवाज है अदनान समी की, गीतकार है समीर, एल्बम का नाम है तेरा चेहरा।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: अगला एल्बम सॉन्ग है अलीशा चुनोई की आवाज में। गीत है शाम अनुरागी का, संगीत है बिद्दू का, एल्बम का नाम है मेड इन इंडिया।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: साथियों, रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गैर फिल्मी गीत है फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीतकार हैं ललित सिंह।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है शोभा मोदगल की आवाज में। गीतकार है अनिल पांडे, संगीत है संदेश शांडिल्य का, एल्बम का नाम है प्यार के गीत।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारा नमस्कार। साथियों, आज यादों की ये महफिल सजी है मशहूर पार्श्व गायक शांतनु मुखर्जी यानी के शान के शानदार गीतों से। आज उनका जन्मदिन है। विविध भारती परिवार और आप सभी की तरफ से हम उन्हें देते हैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। गीतकार हैं समीर अंजान, संगीत है मोंटी शर्मा का और फिल्म का नाम है सांवरिया।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां।

आइए सुनिए अगला गीत शान और कैलाश खेर की आवाजों में। गीतकार हैं प्रसून जोशी, संगीतकार हैं जतिन ललित और फिल्म का नाम है फना।

गायक शांतनु मुखर्जी 30 सितंबर 1972 को खंडवा एमपी में उनका जन्म हुआ था। उनके दादाजी एक जाने माने गीतकार थे और पिता मानस मुखर्जी एक मशहूर संगीत निर्देशक थे और उनकी बहन सागरिका भी एक बेहतरीन गायिका है। साथियों, संगीत के माहौल में पले बड़े शान ने मात्र 4 साल की उम्र से विज्ञापन गीत यानी जिंगल्स गाना शुरू कर दिया था और उनके एल्बम तन्हा दिल और भूल जा बहुत हिट हुए थे। हिंदी के अलावा शान ने मराठी, बंगाली, उर्दू, तेलुगू और कन्नड़ भाषा में भी गीत गाए हैं। उन्होंने कई सिंगिंग रियलिटी शोज को भी होस्ट किया है। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में अगला गीत। साथ में है सुनिधि चौहान भी, नगमा निगार है जावेद अख्तर, धुन है विशाल शेखर की, फिल्म का नाम है तारा रंपम।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: साथियों, गायक शान को अपने शानदार गायन के लिए 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 3 बार अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार और कई अन्य सम्मान मिल चुके हैं। यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए शान और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है निखिल विनय का और फिल्म का नाम है कल हो न हो।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: अगला गीत सुनिए शान और श्रिया घोषाल की आवाजों में। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, तर्ज है नदीम श्रावण की। फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भाव

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, अगला गीत है शान और श्वेता पंडित की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं शंकर एहसान लोए और फिल्म का नाम है नई पड़ोसन।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला शानदार गीत है शान और श्रेया घोषाल की मिलीजुली आवाजों में। गीत रचना स्वानंद किरकिरे की, संगीत है शांतनु मोइत्रा का और फिल्म का नाम है पीके।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: अगला गीत सुनिए शान की आवाज में। गीतकार है विशाल ददलानी, संगीत है विशाल शेखर का, फिल्म का नाम है झनकार बीट्स।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए श्रेया घोषाल और शान की आवाजों में। गीतकार हैं अरुण भैरव, संगीत है साजिद वाजिद का, फिल्म का नाम है वॉन्टेड।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां।

ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

संगीत के इस सुरीले सफर में बनके हमारे हम सफर चलने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार फिर आपको याद दिला दे क्या है आज की इबारत। उसके दामन की खुशबू, उसके कदमों की आहट फजाओं में है, तो भी देखो ना मन नहीं जागे पीछे सपनों के भागे। और जिया में चमके जैसे कोई अंगारा, कुछ ना पूछो दिल का हाल बुरा होता है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, तो सीने में क्यों झनकार हुई। दो दिलों के बीच खड़ी कितनी दीवारें, कैसे सुनूंगी मैं प्रेम की पुकारें, ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई। चाहत का है हरसू असर, चलती हूँ मैं तारों पर, और उसका बस चले तो वो दौड़ के आएगा। ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। तो सुरीला सफर के हमारे बहुत सारे साथी हम सफर बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं, तो उन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में बन के हम सफर आगे बढ़ते जाएंगे। साथियों, अपने संदेश आसान सरल भाषा और कम शब्दों में लिखने की कोशिश करें। वैसे आपको पता है आज की खास बात ये है कि जो हम आपसे पूछना चाहते थे वो ज्यादातर बातें आप पहले ही लिख चुके हैं, पर हम फिर भी आपसे पूछते रहेंगे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आज का ये सुरीला सफर हम तय करेंगे हिंदी सिनेमा के एक महान फिल्म निर्देशक, संपादक और लेखक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों को याद करते हुए और उनकी फिल्मों के गीतों को सुनते हुए। 30 सितंबर 1922 को पश्चिम बंगाल कोलकाता में उनका जन्म हुआ। उन्हें हिंदी फिल्मों में मिडल ऑफ द रोड माना जाता था। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था और कुछ समय तक गणित और विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में अध्यापन भी किया था। उन्हें प्यार से ऋषिदा कहा जाता है और इसके आगे की बातें अब आप हमें बताएंगे। तो साथियों, आज बातें होंगी ऋषिदा की फिल्मों की। उनकी फिल्मों की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं, उनकी फिल्मों के नाम हमें बताएं, और ऋषिकेश मुखर्जी अपनी फिल्मों से क्या मैसेज देते थे हमें वो भी बताएं, और उनकी फिल्मों में जो कॉमन सिचुएशन दिखाई जाती थी, जो हास्य की जो सिचुएशन होती थी, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ अनुभव हुआ था वो भी बताएं। और ऋषिदा की बतौर निर्देशक पहली कौन सी थी और भारत सरकार द्वारा उन्हें कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, और ये भी बताएं कि इस वक्त आपको ऋषिदा की कौन सी फिल्में और गीत याद आ रहे हैं। चलिए कार्यक्रम में हम और आगे बढ़ जाते हैं। आवाज की दुनिया के मेरे दोस्तों, ऋषिदा की फिल्मों की खासियत और उनकी फिल्मों के नाम हमें लिखकर भेज दीजिए। ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित क्लासिक हिंदी फिल्म अनुपमा एक शांत, गहरे भावनात्मक जुड़ाव और पिता पुत्री के रिश्तों की कहानी, तो हमें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम भी लिखकर भेज दें और इस फिल्म को कौन सा अवार्ड मिला था वो भी बता दें, और इस गीत में आवाज, गीत, संगीत किसका है वो भी बता दें, और साथ में ये भी बताएं कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। आइए कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ में, जिसको लिखा है मशहूर शायर कैफी आजमी ने। बाकी चीजें तो आप हमें बताने वाले हैं।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
4: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
3: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
5: अगर तुम मिल जाओ।
3: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं जो इस तरह से हैं। धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, तरुण बोस, शशिकला देवन वर्मा और सुरेखा पंडित। इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था और इस गीत को लिखा था मशहूर शायर कैफी आजमी ने, संगीत था हेमंत कुमार का और आवाज थी लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था अनुपमा। और अब पढ़ लेते हैं हमारे साथियों के कुछ संदेशे। हमारे एक साथी ने इबारत पढ़ के लिखा है कि दामन के दाग मिटाए जा सकते हैं मगर दिल के जख्मी दागों को नहीं मिटाया जा सकता। दिलरुबा की दीदार के लिए दिलबर की हालत का अंदाजा एक दिल वाला ही लगा सकता है। दर्द भरे नगमों के जरिए के दरिया में बहने के लिए हमारा दिल भी बेकरार है। और एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में जिंदगी बहुत अपनी सी लगती है, कहीं रिश्तों की मिठास, कहीं दोस्ती, कहीं और कहीं आंखों की नमी, कहीं आंखों को नम कर देने वाली संवेदनाएं। उनकी सादगी भरी कहानियां हमें हंसाते हुए भी जीवन का थोड़ा और करीब जीवन को थोड़ा और करीब से समझा देती हैं। शायद यही वजह है कि उनकी फिल्में और उनके गीत आज भी दिल में बसे हुए हैं। एक और संदेश है कि ऋषिदा की फिल्में पारिवारिक बातों पर, मध्यम वर्गीय लोगों की आम समस्याओं पर बनी थी। उनमें प्रेम की भावना समान था। एक साफ सुथरी फिल्म रहती थी जो परिवार से सब लोग बैठ के देखें तो भी संकोच नहीं होता था। और ये अगला संदेशा है कि रात कली जब ख्वाब में आने लगे तो समझिए धीरे धीरे दिल मचलता जरूर है, जो प्रेम की शुरुआती दस्तक और सपनों के एहसास नजर आ रहे हैं। जिंदगी में प्यार के रास्ते में उतार चढ़ाव आते ही हैं। कभी कभी कोई पल ऐसे भी हो सकते हैं जहां लम्हे खो जाते हैं, जब जिस वक्त यार जुदा हो तो तब दिल कहता है कि तेरा मेरा प्यार अमर है, इसलिए हम अब के सावन में जरूर मिलेंगे। और एक मित्र ने लिखा है कि तेरे प्यार के दामन में ही लिपटे हैं हम, छोड़कर तुम्हें अब कहां जाएं हम, तेरी चाहत में इस तरह डूबे हैं हम, डर है कि खुशी से कहीं मर ना जाएं हम। क्या बात है। और ये एक अलग मैसेज है कि मन तो भागता ही है सपनों के आगे, लेकिन हमें प्रेम से दो दिलों के बीच की दीवारों को हटाना होगा। और ऋषिदा को सादर नमन। साथियों, मशहूर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की 1971 में बनी क्लासिक फिल्म आनंद एक ऐसे जिंदा दिल इंसान की कहानी है जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद अपनी मौत से नहीं डरता और बाकी बचे दिनों को पूरी खुशी के साथ गुजारता है। तो बताएं कि आनंद सहगल और डॉक्टर भास्कर बैनर्जी की भूमिकाओं में कौन से अभिनेता नजर आए थे और इस फिल्म के कुछ डायलॉग बेहद मशहूर हुए थे, वो भी लिखकर भेज दीजिए हमारे FB पेज पर। और तब तक सुनिए ये गीत मन्नाडे की आवाज में। गीतकार हैं योगेश, संगीतकार हैं सलील चौधरी। फिल्म का नाम है आनंद।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: साथियों, आपने जो कमेंट्स और जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए हैं, जो इस तरह से हैं। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रमेश देव, सीमा देव, ललिता पवार और सुमिता सनपाल। और मशहूर डायलॉग है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं बाबू मोशाए। हमारे साथियों ने लिखा है कि 1940 के दशक में ऋषिदा ने न्यू थिएटर में बतौर कैमरामैन और एडिटर काम शुरू किया। उसके बाद वो मशहूर फिल्मकार बीमल रॉय के साथ मुंबई आ गए और 2 बीघा जमीन जैसे फिल्म में सहायक निर्देशक और संपादक के रूप में काम शुरू किया। उसके बाद राज कपूर के साथ उनकी फिल्म अनाड़ी ने उन्हें बड़ी सफलता दिलाई। उनकी फिल्मों की कहानियां रोजमर्रा की जिंदगी, सरलता, सादगी, सौम्य हास्य और आम जीवन के अनुभवों से जुड़ी होती थी। ऋषिदा ने आम मध्यम वर्गीय परिवार, मानवीय मूल्यों को अपनी फिल्मों का आधार बनाया।

0: और अब पढ़ते हैं आपके कुछ संदेश। फिल्म चुपके चुपके ऋषिकेश मुखर्जी का निर्देशन और पटकथा इतनी सहज है कि फिल्म बिना किसी फूहड़ता के पारिवारिक मूल्यों और साफ सुथरे हास्य का बेहतरीन उदाहरण पेश करती है। और एक साथी ने लिखा है कि सुरीला सफर की यही खूबसूरती है कि एक एक शब्द अपने भीतर किसी गीत की पूरी कहानी को छुपाए रहता है। और ये अगला मैसेज है कि आज ऋषिकेश मुखर्जी की याद का दिन है, उनकी फिल्में सादगी, संवेदनाओं और मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ चित्रण के लिए जानी जाती हैं। उनकी कहानियां आम आदमी, उनके संघर्षों, परिवार और मूल्यों के इर्द गिर्द घूमती हैं। उन्होंने व्यावसायिक चकाचौंध और कला फिल्मों के बीच एक सुंदर संतुलन बनाया। अगला मैसेज है कि आखिर ये दिल का कौन सा राज है जो हर धड़कन में उसी का नाम और उसी के आने का इंतजार जगाता है। अगला मैसेज है कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों का मानवीय स्पर्श इन नगमों को सिर्फ गीत नहीं रहने देते बल्कि उन्हें हमारी अपनी जिंदगी और भावनाओं का हिस्सा बना देते हैं। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी ने कला फिल्मों की गंभीरता और व्यावसायिक फिल्मों की चमक दमक के बीच एक संतुलित और सहज रास्ता अपनाया। उनकी कॉमेडी फिल्में जैसे कि गोलमाल या चुपके चुपके में फूहड़ता नहीं बल्कि सौम्यता और हास्य था। आनंद या बावर्ची जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने जीवन का दर्शन, रिश्तों की गहराई का संदेश दिया है। दोस्तों, आज का सुरीला सफर हम तय कर रहे हैं ऋषिदा की फिल्मों की बातें और उनके गानों को सुनते हुए। और अब बात पति पत्नी के रिश्ते, सफलता, पुरुष का अहंकार, भावनाओं के उतार चढ़ाव पर बनी एक बेहतरीन म्यूजिकल ड्रामा फिल्म अभिमान की। तो बताएं कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया भादुरी बच्चन ने कौन सी भूमिकाएं निभाई थी और उनके साथी कलाकारों के नाम भी हमें लिखकर भेज दें।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

हमारे साथियों ने कुछ और बातें लिखी हैं और जवाब भी लिख दिए हैं। आवास की दुनिया के दोस्तों, आप हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, हमें अपने संदेश भेज रहे हैं और एकदम लाइव कार्यक्रम है ये सुरीला सफर, तो हम अपने साथियों के संदेश पढ़कर आपको सुनवा देते हैं। इस सफर में लोकप्रिय गायक सुबीर कुमार की भूमिका निभाई थी अमिताभ बच्चन ने और शास्त्रीय संगीत में माहिर गायिका के किरदार में नजर आई थी जया भादुरी बच्चन और उनके साथी कलाकार थे बिंदु असरानी, दुर्गा खोटे, एके हंगल, डेविड अब्राहम और ललिता कुमारी। हमारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं कि 1957 में बतौर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मुसाफिर और उनकी मशहूर फिल्मों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, आनंद, गोलमाल, चुपके चुपके, बावर्ची, खूबसूरत, गुड्डी, आशीर्वाद, सत्यकाम, अभिमान, अनाड़ी और अनुपमा। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी का सिनेमा इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि मनोरंजन करने के लिए फूहड़ता का सहारा लेना जरूरी नहीं है। उनकी फिल्में शुद्ध, सात्विक और पूरे परिवार के साथ बैठकर देखने योग्य होती हैं। आज के युग में ऋषिदा की फिल्में एक ताजी हवा के झोंके की तरह है। और एक साथी ने लिखा है कि आज के गीत ऋषिकेश मुखर्जी की खूबसूरत फिल्मों से होंगे। इन गीतों में जिंदगी की सच्चाई, हंसी खुशी, रिश्तों की मिठास, दोस्ती, आंखों को नम कर देने वाला एहसास होगा। ऋषिदा को हम नमन करते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि प्रेम भी कितना अनोखा एहसास है, दो दिलों के बीच चाहे कितनी ही दीवारें हों, उसकी पुकार फिर भी सुनाई दे जाती है। चाहत का असर ऐसा होता है कि इंसान जमीन पर चलते हुए भी खुद को तारों के बीच महसूस करने लगता है।

0: और तब दिल बार बार यही पूछता है, आखिर प्यार का ये राज है क्या। अच्छा जी, आज ऋषिकेश मुखर्जी की को याद करेंगे उनके फिल्मों के गानों से। उन्होंने कई पारिवारिक और सामाजिक फिल्मों को बनाया जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। उन्होंने कॉमेडी फिल्में भी बनाई जिसे देखकर हंसते हुए हम लोटपोट हो गए। उनकी फिल्में परिवार में सब लोग साथ बैठकर देख सकते हैं। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी एक ऐसे निर्देशक थे जिन्हें वक्त की पहचान खूब थी। उस जमाने में उन्होंने वक्त की नब्ज पकड़ी और ऐसी फिल्में बनाई जो आम दर्शकों से लेकर एक खास वर्ग के लिए थी, जहां सब कुछ सीधा सादा था और दर्शकों ने भी उन फिल्मों को खूब प्यार दिया। आज भी उनकी बनाई फिल्में जब टीवी पर आती हैं तो हम उन्हें देखने का मोह छोड़ नहीं पाते। वे फिल्में कल भी कालजयी थी और आज के दौर के लिए भी बहुत अहम है। दोस्तों, आपको ऋषिकेश मुखर्जी की और कौन सी फिल्में याद हैं, कौन से गीत आपको पसंद है, वो हमें लिखकर भेजते जाइए। उनकी फिल्मों से जुड़ी कोई याद हो तो वो भी हमें बताएं। और अब हम बात करेंगे चुपके चुपके, एक बेहद मशहूर क्लासिक कॉमेडी फिल्म जिसकी कहानी हास्य और मजेदार उलझनों पर आधारित है। आपने ये फिल्म तो जरूर देखी होगी, तो बताएं कि प्यारे मोहन परिमल त्रिपाठी किस विषय के प्रोफेसर थे और उनके दोस्त प्रोफेसर सुकुमार सिन्हा किस विषय के प्रोफेसर थे, और इस फिल्म के सभी कलाकारों के नाम लिखकर हमें भेज दे। आइए सुनते हैं ये गीत। वैसे तो सावन लगभग गुजर चुका है। आवाज है इस गीत में लता मंगेशकर की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है चुपके चुपके।
1: आपके सजन सा

हमारे साथियों ने संदेश भेज दिए हैं, जवाब हमें मिल गए हैं। धर्मेंद्र यानी प्यारे मोहन परिमल त्रिपाठी बॉटनी साइंस के प्रोफेसर के रोल में नजर आए थे और सुकुमार सिन्हा बने अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया था अंग्रेजी के प्रोफेसर का। और साथी कलाकार थे शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, असरानी, उषा किरण, केष्टु मुखर्जी और ललिता चक्रवर्ती। हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में कलाकारों ने स्टार बनकर नहीं बल्कि किरदार बनकर काम किया। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और अमूल पालेकर जैसे बड़े अभिनेताओं से उन्होंने बेहद सादगी भरे रोल करवाए। उनकी फिल्मों की अभिनेत्रियां जैसे कि जया बच्चन, शर्मिला टैगोर, दीप्ति नवल कोई ग्लैमर डॉल नहीं बल्कि घरेलू पढ़ी लिखी और मजबूत विचारों वाली महिलाएं होती थी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषि दास सिर्फ हंसाना ही नहीं जानते थे बल्कि आंसुओं के जरिए जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा समझाना भी उनकी कला थी। आनंद बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, इस संवाद के जरिए कैंसर से जूझ रहे एक इंसान की जिंदा दिली को जिस तरह उन्होंने पर्दे पर उतारा वो मील का पत्थर है। अभिमान, पति पत्नी के बीच अहंकार, ईर्ष्या और संगीत के प्रति प्रेम के टकराव को बेहद संजीदगी और बिना किसी मेलोड्रामा के दिखाया गया है। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिदा ने अपने चार दशकों के करियर में 42 फिल्में डायरेक्ट की और उन्हें भारत के मिडिल सिनेमा का पायनियर माना जाता है। उनकी फिल्में मिडिल क्लास के माहौल को दिखाती थीं। एक मैसेज है कि ऋषि दा एक ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों को एक नई राह दिखाई। उनकी फिल्में ना तो तड़क भड़क भरी होती थी, ना बहुत ज्यादा संजीदा होती थी, बल्कि उनमें सादगी और संजीदगी का एक बेहतरीन मिश्रण हुआ करता था। उनकी फिल्मों में आम इंसान की रोजमर्रा जिंदगी, उसकी खुशी, उसके गम और उसके मसाइल को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया जाता था। ऋषिदा की फिल्में जमीनी जनजीवन की जीवंत जगाती तस्वीर होती थी। दर्शक उनकी फिल्मों में खुद को महसूस करता था और बावर्ची फिल्म मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। एक साथी ने लिखा है कि ये कैसा संयोग है कि इस वक्त टीवी पर फिल्म

अनुपमा दिखाई जा रही है और गाना धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार चल रहा है और इधर रेडियो पर भी यही गाना चल रहा है। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म अनुराधा के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिला था। साथियों 1979 में आई कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म गोलमाल की कहानी एक युवा राम प्रसाद और सख्त मिजाज बॉस भवानी शंकर के इर्द गिर्द घूमती है और अंत में कई मजेदार मोड़ के बाद सच सबके सामने आ जाता है और फिल्म का सुखद अंत होता है। तो साथियों इस मजेदार फिल्म की कौन सी बातें आपको याद है हमें लिखकर कमेंट कर दें और साथ ही ये भी बता दें कि इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन कौन थे। तब तक सुना जाए ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम है गोलमाल।

साथियों, आपके कमेंट्स और जवाब हमें मिल गए हैं, वो हम पढ़ देते हैं। अमूल पालेकर, उत्पल दत्त, बिंदिया गोस्वामी, अमिताभ बच्चन, देवन वर्मा और ओम प्रकाश। हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी की अभिमान केवल एक संगीतमय फिल्म नहीं है, बल्कि ये मानव स्वभाव और वैवाहिक जटिलताओं का एक गहरा मनोवैज्ञानिक दस्तावेज है। ये फिल्म आज 50 से अधिक सालों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये सिखाती है कि किसी भी सफल विवाह की बुनियाद एक दूसरे की सफलता का सम्मान करने और अहंकार को रिश्ते से दूर रखने पर टिकी होती है। अगला कमेंट है कि फिल्म अभिमान की सीख यही है कि महिलाओं के करियर पे पुरुष अहंकार को हावी नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। और एक साथी ने लिखा है कि अभी आनंद फिल्म का जिक्र हुआ था, तो इस फिल्म के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि सभी को उसमें काम करने वाले हर किरदार की जगह खुद को रखकर देखना चाहिए, तो लगेगा कि हम ही हैं वहां पर। हर किरदार अपना सा लगता है। मैं ये फिल्म जब भी देखता हूं तो अपने आप को वहां पर खड़ा पाता हूं। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म अभिमान में अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में एक श्लोक संगीतकार सचिन देव बर्मन के संगीत में रिकॉर्ड हुआ था, और यहीं से अनुराधा पौडवाल के गीतों के करियर की शुरुआत हुई थी। साथियों, 1980 में बनी फिल्म खूबसूरत एक ऐसे परिवार की कहानी जिसकी सख्त मिजाज मुखिया घर के सभी नियम कड़ाई से लागू करती हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार तनावपूर्ण माहौल में रहता है। कहानी में बदलाव तब आता है जब मंजू नाम की लड़की कुछ दिनों के लिए उस घर में आती है और अपने चुलबुले नटखट और जिंदा दिल अंदाज से घर के नियमों को चुनौती देती है। तो बताएं कि घर के मुखिया के किरदार में कौन सी अभिनेत्री थी, साथ ही कलाकारों के नाम भी बता दें। और खूबसूरत इस नाम से इस फिल्म का एक मॉडर्न रीमेक भी तो बना था, तो उस रीमेक फिल्म की अभिनेत्री का नाम भी हमें बता दें। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं ये एवरग्रीन सुपरहिट गाना आशा भोसले की आवाज में। इस गुलजार गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है खूबसूरत।

हमारे साथियों ने जवाब लिख दिए हैं। घर की मुखिया के किरदार में नजर आई थी अभिनेत्री दीना पाठक। मुख्य साथी कलाकार थे अशोक कुमार, रेखा, राकेश रोशन, ओम शिवपुरी, शशिकला रूपिनी और इस फिल्म के रीमेक में नजर आई थी अभिनेत्री सोनम कपूर। एक मशहूर हिंदी कॉमेडी फिल्म बुड्ढा मिल गया। फिल्म की कहानी दो गरीब और बेरोजगार दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है। अचानक उन्हें एक अमीर और लापता करोड़पति मिल जाता है और उन दोनों को लगता है कि इस बूढ़े अमीर आदमी को उसके घर पहुंचाकर वो भारी इनाम पालेंगे। उसके बाद फिल्म में कई रोमांचक मोड़ आते हैं, तो हमें बताएं कि वो करोड़पति अमीर आदमी कौन था और साथ ही कलाकारों के नाम भी लिख दें और साथ में ये भी बताएं कि इस फिल्म के हीरो की पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी। तब तक सुनिए ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है बुड्ढा मिल गया।

के जवाब हमें मिल गए हैं। अमीर लापता करोड़पति की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे ओम प्रकाश, मुख्य कलाकार थे नवीन निश्चल, देवन वर्मा, अर्चना और अरुणा ईरानी, और इस फिल्म के नायक नवीन निश्चल की पहली हिंदी फिल्म थी सावन भादो, जो कि अभिनेत्री रेखा की भी पहली हिंदी फिल्म थी।

साथियों, सुरीला सफर के हम सफर बनकर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

0: सखी सहेली नमस्कार सभी सखियों को, सभी सखाओं को, और साथ ही आज हमारे साथ हैं कौन? नेहा।
1: तो आरती जी, नेहा शर्मा का नमस्कार आपको भी और सभी सुनने वालों को भी।
0: बिल्कुल। और नेहा, आज बहुत दिनों बाद हम लोग एक साथ आए ना।
1: और इतने सारे दिन लेकर आए
0: आज समझ लो दिनों की, यानी कि दिवस की बहार है पूरी।
1: हाँ,
0: तो हम लेकिन बीच बीच में, बात बात में हम अपने दिवस की बात भी करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें बता देना चाहिए कि आज हम कौन कौन से विषय लेके आए, ताकि जो हमारे श्रोता है जो सुन रहे हैं वो अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकें। तो आज हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री के अंतर्गत लक्ष्मी बरुआ, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके जीवन संघर्ष के बारे में बात करेंगे। और साथ ही क्या लेकर आए हैं?
1: मुझे कुछ कहना है, हमारे साथियों ने कहना शुरू कर दिया है, संगीत का जादू। हमने कहा था इस विषय पर कुछ कहें, तो उन्होंने इतनी सारी बातें कहनी शुरू कर दी है। और उपयोगी टिप्स में आज हम बात करेंगे वृद्धजनों की देखभाल। हाँ, किस तरह से हो,
0: कैसे करनी चाहिए, कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई साइंस प्रोजेक्ट है।
1: हाँ,
0: बस कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना है, अपने जो

0: बुजुर्ग हैं उनकी सहायता करनी है, बस सहायता, एक सहायक की तरीके से हमें काम करना है, उनके अपने की तरह से काम करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये सारी चर्चा हम करेंगे, साथ में बात करेंगे, लेकिन एक गीत सुनने के बाद, है ना।
1: देखिए आते
0: संगीत
1: ही,
0: क्योंकि
1: आते
0: संगीत का दिन है ना
1: जी।
0: तो संगीत के दिन की शुरुआत अगर गीत से करें तो सबसे बढ़िया
1: तो
0: बात।
1: कार्यक्रम में भी संगीत का जादू छाने देते हैं और कार्यक्रम में पहला गीत आने देते हैं।
0: बिल्कुल।

0: है, कौन कौन से दिवस है जरा बताइए तो, सस्पेंस क्यों है इतना?
1: बिल्कुल, और इतने स्वादिष्ट दिवस है ना, बहुत मजा आ जाएगा। क्योंकि देखो, एक तो है शाकाहार दिवस, यानी कि अच्छी अच्छी चीजें खाइए, फल फ्रूट, फल नहीं माफ कीजिएगा, अब हम खा सकते हैं सब्जियां, बढ़िया बढ़िया। वैसे शाकाहार में फल भी आता है, सब्जियां आती है, सब कुछ आता है।
0: जब उपवास करते हैं तो बस फलाहार बोल के जो खाते हैं हम,
1: आपको फलाहार भी वही है, तो सब्जियां हरी हरी खा सकते हैं, बढ़िया। और हमारा खून भी बढ़ाती है, हमारा जो दिमाग है उसको भी शार्प करती है, तेज करती है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो शाकाहार में बहुत सारे गुण भी समाये, और साथ ही हम बात करेंगे, पूछेंगे बल्कि अपने साथियों से जो श्रोता है उनसे, कि उन्हें क्या पसंद है, चाय की कॉफी, वैसे तुम्हें क्या पसंद है?
0: ये क्यों पूछ रहे हैं आप, शाकाहारी में ये सब कैसे आ गए?
1: देखो, एक तो शाकाहार दिवस है, समझो ना, थोड़ी सा जो हम हिंट दे रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं,
0: समझ तो गए हम भी कि कॉफी या चाय में से क्या पसंद है। तो हम अपना जो जवाब है वो बचा के रखेंगे उस समय के लिए जब हमारे श्रोता अपने जवाब दे देंगे।
1: बिल्कुल, आप लोग भी बताइए आपको क्या पसंद है, चाय की कॉफी,
0: फिर पता चलेगा कि आज सखी सहेली के बाद चाय मिलेगी या कॉफी मिलेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: या दोनों ही नहीं मिलेगा।
1: नहीं, कॉफी या चाय में से आप बताइए आपको क्या पसंद है, तो क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ हमारा दिवस है, है ना।
0: और जो शाकाहारी दिवस आज है हम बता रहे हैं, तो दिन भी थोड़ा हरा भरा है, और शाकाहारी लोगों की मतलब बातें करें, शाकाहारी जिन लोग खाते हैं, मतलब सभी खाते हैं, शाकाहारी तो सब होते हैं, क्योंकि सभी एक नए
1: शाकाहार के साथ में
0: कुछ कुछ और दूसरे आहार भी लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो शाकाहारियों की, इनकी थाली को देखकर, सब्जियां देखकर डॉक्टर भी बोल देते हैं कि भाई वाह, रंगों का पूरा पैलेट ही यहाँ पे भरा हुआ है। तो विश्व शाकाहारी दिवस में हम यही बात कर सकते हैं कि शाकाहारी भोजन और पौधों से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, उनके संतुलित खान पान के बारे में सोचने का मौका ये दिन हमें देता है।
1: बिल्कुल, लेकिन आज हम कोई भारी भरकम सा आपको भाषण नहीं देने वाले हैं कि हाँ कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। आपको जिस कलर की, जिस रंग की सब्जी पसंद है आप खाइए, जो फल पसंद है वो खाइए। और देखिए, खाने के समय भाषण सुनना ऐसे ही लगता है जैसे कि गर्मा गर्म पकौड़े सामने रखे हों और कोई कहे पहले इसमें से आप कैलोरी गिननी कि आपको कितना इसमें से आपको आपके वजन बढ़ाने वाली चीजें हैं, इसमें ऐसी चीजें वैसी चीजें, तो उस समय तो हमें लगता है ना कि हम बस एंजॉय करें, उसको आनंद उठाएं उस पकौड़ों का। तो वैसे ही है शाकाहार दिवस के बारे में बात करेंगे, तो हम अपनी अपनी बात करिए, आप बताइए कि भाई आपको कौन सी सब्जी पसंद है, क्या खाना अच्छा लगता है आपको, मतलब कौन सी सब्जी को किस तरह से बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं एक ही सब्जी को, तो ये बता सकते हैं आप। और साथ ही बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपके जो जो प्लेट रहती है उसमें किसका राज रहता है, आलू का, गोभी का, टमाटर का, मिर्ची का, किस चीज का सबसे ज्यादा रहता है बोलवाला?
0: तो लग रहा है आलू ही जीत जाएगा वैसे। लेकिन पनीर भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि पनीर कुछ घरों के लिए तो सब्जी नहीं है बल्कि परिवार का एक सदस्य जैसा होता है। कहते कि क्या बनेगा ते पनीर, कल क्या बना था पनीर, आज क्या बनेगा पनीर,
1: कोई थोड़ा आ रहा है तो भी पनीर, कोई नहीं आ रहा है तो भी पनीर,
0: और बहुत दिनों से खाया नहीं इसलिए भी पनीर। तो पर कुछ अलग अलग पनीर की भी बहुत सी रेसिपी होती है, तो अलग अलग बनाते हैं कि कभी क्या बनेंगे, तो शाही पनीर बनेगा, कभी कुछ पनीर का अलग अलग चीजें, कभी भुर्जी बन जाती है पनीर की, तो पनीर भी अपने आप को रंगों में अलग अलग रूपों में ढाल
1: लेता है। हरा भरा पनीर हो जाता है जब हम उसमें कोई हरी सब्जी मिला के बना लेते हैं।
0: और सही बात ये भी है कि शाकाहारी भोजन बोलते साथ ऐसे जो कहते हैं ना घास फूस बोलते कई बार लोग, तो वो घास फूस नहीं, ऐसा नहीं कि सलाद की प्लेट लेकर बैठ गए तो ही शाकाहारी, भाई शाकाहारी व्यंजनों की जो बातें हैं वो तो अपने आप में ही है, क्योंकि इतनी सारी विविधता है हमारे रसोई में, हम जब देखते हैं शाकाहारी खाने की तो ऐसा लगता है कि खाना खा लें कि इसकी फोटो खींच लेंगे, इतना कलर रहता है, इतना रंग रहता है, तो बड़ा आनंद भी आता है।
1: बिल्कुल, और दाल चावल रोटी सब्जियां फल अनाज दही दूध पनीर मेवे, कई तरीके के जो पौधे होते हैं वो उनपे जो आधारित फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, और ये सब्जियां होती हैं, शाकाहार होता है, तो अगर संतुलित भोजन हो तो शाकाहारी थाली जो होती है वो स्वाद और पोषण दोनों से भरी हुई हो सकती है। और शाकाहारी भोजन में भी संतुलन बहुत जरूरी होता है कि एक ही चीज अब मत खाते रहिए कि हमने पनीर खाने तो पनीर चला जा रहा है, बाकी चीजों को भी मौका दीजिए अपनी स्वाद को पहचानने का। तो दालें हैं और प्रोटीन के और भी बहुत सारे स्रोत हैं, साबुत अनाज हो गए, मौसमी फल सब्जियां हैं, मेवे हैं, बीज हैं, और बहुत से आवश्यकता अनुसार जैसे कि आप दूध दही का भी सेवन कर सकते हैं, उसको भी तरह तरह से बना सकते हैं, तो इससे पौष्टिकता तो आती है और साथ ही विविधता भी आती है खाने में।
0: और हरी सब्जी को देख के ऐसे प्लेट से भागने लगते हैं, बोले अरे अरे हरी सब्जी क्यों खानी है, लेकिन अगर उसको स्वादिष्ट तरीके से हम पकाते हैं तो उसका एक अलग तरह का जायका बढ़ जाता है, और ऐसा लगता है जिसको देख के कल को ऐसे लगता था कि नाक सिकोड़ते थे कि ये नहीं खाना है, वो हमारी पसंदीदा या डिश बन जाती कि ये नहीं बना, चाहे वो लौकी ही क्यों ना हो, क्योंकि लौकी बड़ी स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन लोग उसे खाना नहीं चाहते, उनके कहते हैं कि लौकी कद्दू क्या खाना है।
1: लौकी को ही नहीं, अगर हम दाल में, चने की दाल में डाल के बनाए, क्या स्वाद बनती है वो।
0: हाँ, तो वही तो बात है कि अगर जब हम उसको बनाने का तरीका

0: अगर बदल देते हैं तो ये सब्जियां भी बोल सकती कि भाई मैं जब पहले खाने की मेज पे आती थी तो कैसी शिकायतें होती थी, अब देखो अब मुझे देख के मुंह मत बनाओ, मुझे देख के थोड़ा मौका तो दो। अलग अलग तरह से अब लौकी का अगर रायता बनाया जाए तो कोई मुंह ना
1: कोफ्ता, वाह क्या क्या बात है।
0: देखिए लौकी पे ही हमारा कुछ अलग सा ऐसा प्रेम जागृत हो चुका है।
1: कहने की मतलब कहने का मतलब है कि एक छोटी सी एक सब्जी जिसपे आप नहीं खाना चाहते किस तरीके से कितने कितने तरीके से बन सकती है।
0: तो इस तरह से बन सकती है, व्यंजन विधियों में तो हम बताते ही हैं, लेकिन जब इतनी बातें होगी खाने की, जब ज्यादा बातें हो जाती है ना तो हमें एक गीत चला लेना चाहिए,
1: क्योंकि थोड़ा हटे वहां से
0: दिमाग और थोड़ा जो मुंह में पानी आ गया उसका क्या किया जाएगा।
1: बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा लगेगा।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुण। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

0: तो आरती जी, 3 तारीख का जो जश्न है वो तो बड़े जोर शोर से होने वाला है, और हमारे सभी जो श्रोता हैं वो भी फेसबुक पेज के जरिए लाइव सुनेंगे, शायद
1: सबको इंतजार होगा,
0: लाइव सुनने तो मिलेगा ही उन्हें।
1: बिल्कुल। और अब हम बढ़ते हैं अगले अपने सेगमेंट की तरफ, जो कि है कहानी पद्मश्री की। तो आज हम लेकर आए हैं जिनकी कहानी, वो है लक्ष्मी बरुआ, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। और कभी कभी समाज को बदलने के लिए किसी बड़े पद की नहीं, बस एक बड़े सपने की जरूरत होती है, और एक ऐसा सपना जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए देखा जाए जिनकी आवाज उठाने के लिए उनके साहस की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो ऐसी प्रेरणादायक महिला है, क्योंकि इन्होंने बैंक को सिर्फ पैसा जमा करने और कर्ज लेने की जगह नहीं माना, बल्कि उसे महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सम्मान का माध्यम भी बनाया। जैसा कि आपने नाम कहा, लक्ष्मी बरुआ हैं ये, और असम की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी महिला है। उनका जीवन विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के प्रयासों के लिए जाना जाता है।
1: बिल्कुल। और लक्ष्मी बरुआ का जन्म हुआ आसाम के जोरहाट जिले में हुआ था उनका जन्म, और उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। परिवार की कमजोर आर्थिक परिस्थितियों के चुनौतियों के बावजूद शिक्षा और समाज के लिए बहुत कुछ करने का उनका हौसला जो था वो बना रहा।
0: 1973 में प्रभात बरुआ से इनका विवाह हुआ और इसके बाद इनकी जिंदगी ने नई करवट ली। प्रभात प्रगतिशील सोच के मालिक थे और लक्ष्मी के लिए वो सुलझे हुए जीवन साथी और मेंटोर दोनों साबित हुए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उन्हें कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि 1980 में जब वो जोरहाट के वाहना कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने में कामयाब हुई, तब प्रभात ने उन्हें नौकरी करने के लिए भी प्रेरित किया।
1: बहुत बड़ी बात है ये, उस समय के लिए खास तौर पर। और विवाह के बाद परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने समाज के लिए काम करने का अपना संकल्प छोड़ा नहीं। ग्रामीण विकास, वयस्क शिक्षा, जरूरतमंद महिलाओं की सहायता और वंचित लोगों के बीच काम करते हुए उन्होंने उन्हें बहुत करीब से देखा था कि आर्थिक निर्भरता जो होती है वो महिलाओं के लिए जो उनका जीवन होता है उसको कितना सीमित कर देती है।
0: जी, तो लक्ष्मी बरुआ ने बैंक में काम करते हुए एक ऐसी समस्या को महसूस किया जो आज हमें तो छोटी लग सकती है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी थी। जैसे कि गरीब और कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो बैंक तक आती थीं, लेकिन बैंकिंग की जटिल प्रक्रियाओं और आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उन्हें कई बार मदद ही नहीं मिल पाती थी।
1: बिल्कुल। और यहीं से उनके मन में सवाल उठा कि अगर बैंक की व्यवस्था इन महिलाओं तक आसानी से नहीं पहुंच सकती तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो महिलाओं की जरूरतों को समझे। और 1983 में उन्होंने जोरहाट के दक्षिण में महिला समिति की शुरुआत की,
0: और महिलाओं के साथ काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि छोटी छोटी आय अर्जित करने वाली महिलाओं के पास भी सुरक्षित बचत और वित्तीय जानकारी के पर्याप्त साधन नहीं थे। महिलाओं के लिए बैंक खोलने का विचार उनके मन में 1990 के आसपास आकार लेने लगा था।
1: बिल्कुल। लेकिन सपना देखना तो आसान था इतनी बड़ी बात को, लेकिन उसे सच करना उतना आसान भी नहीं था। लक्ष्मी बरुआ को कई कठिनाइयों और अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा। लगभग 8 वर्षों तक उन्होंने प्रयास किए और उसके बाद उनका सपना वास्तविकता की दिशा में बढ़ सका, और अंततः 1998 में जोरहाट में कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई।
0: और इस संस्था का उद्देश्य केवल बैंकिंग सेवा देना नहीं था, इसका उद्देश्य था महिलाओं में बचत की आदत को विकसित करना, उन्हें वित्तीय जानकारी देना, स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना और आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाना। और ये बैंक अपने स्वरूप में बहुत ही खास था,
1: ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित था और इसके संचालन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बैंक ने कम आय वाले लोगों और महिलाओं तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया। छोटी बचत से लेकर ऋण और वित्तीय जागरूकता तक इस पहल ने बैंकिंग को उन महिलाओं के करीब लाने का प्रयास किया जो पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से दूर थीं।
0: और एक छोटा सा विचार है आरती जी, और ये छोटे से विचार ने ही धीरे धीरे हजारों खातों और अनेक परिवारों के जीवन को प्रभावित किया। लक्ष्मी बरुआ की सोच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कि महिला को सिर्फ सहायता देना नहीं है बल्कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर देना होगा।
1: यही सबसे बड़ी बात है कि अवसर देना चाहिए उनको, और क्योंकि जब किसी महिला के पास अपनी कमाई होती है, बचत होती है, बैंक खाता होता है और आर्थिक फैसले लेने का आत्मविश्वास होता है तो उसका प्रभाव केवल उस महिला तक सीमित नहीं रहता है और उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है।
0: हाँ, और बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ता है इसका असर, घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, धीरे धीरे पूरे समाज पर पड़ता है। और यही कारण है कि लक्ष्मी बरुआ की कहानी केवल बैंक की कहानी नहीं है बल्कि आत्मसम्मान की कहानी है।
1: बिल्कुल। उनके सामाजिक और महिला सशक्तिकरण के कार्यों को अनेक स्तरों पर सम्मान भी मिला। 2016 में नारी शक्ति पुरस्कार से जुड़े सम्मान के माध्यम से कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कार्य को भी राष्ट्रीय पहचान मिली और लक्ष्मी बरुआ को देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। गया और फिर आया वर्ष 2021 जब सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।
0: और ये सम्मान उनके लिए ही नहीं बल्कि उन असंख्य महिलाओं के संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी के लिए महत्वपूर्ण पहचान बना जिनके लिए उन्होंने वर्ष

0: वर्षों तक काम किया। लक्ष्मी बरुआ का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि सच्चा बदलाव वही है जो किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत दे। तो जब महिलाएं काम करती हैं, कहते हैं ना वो जिस तरह की बात है कि महिला अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार पूरा समाज शिक्षित होता है, उसी तरह से जब एक महिला ये सोचती है कि महिलाओं के लिए उन्हें कुछ करना है या समाज के लिए कुछ करना है तो बदलाव जरूर आता है।
1: बिल्कुल। और एक बदलाव हम लेके आते हैं कि एक गीत संगीत में से कोई गीत सुन लेते हैं।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: तो आरती जी, हम तो बातें कर रहे हैं लेकिन हमारे साथियों ने

0: अपना भेज लिखना शुरू कर दिया है कि कौन कौन सी सब्जियां उनके घर में बनती हैं।
1: अच्छा,
0: तो हमारे एक साथी कह रहे हैं हम तो सब्जी आजकल गोभी की ज्यादा खाया करते हैं, कल आलू की सब्जी खाई थी, आलू भी स्वादिष्ट थे, आगरे के थे वो मीठे होते, पंजाब का आलू स्वादिष्ट नहीं होता है। अच्छा। हमें तो आलू एक जैसा ही लगता है सारा।
1: बिल्कुल। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि सही कहा आपने, आलू ही जीतेगा, सबसे ज्यादा आलू पसंद है हमारे घर में सबको, पनीर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे पनीर तो सभी को पसंद होता है, चलिए आपको पसंद नहीं,
0: नहीं सर, तो आप आलू खा सकते हैं, सभी को आलू भी पसंद नहीं होता, सभी को कुछ भी चीज़
1: क्योंकि आलू में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल जाता है कहते हैं ना, उसमें आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
0: हमारे एक साथी कह रहे कल ही हमने हमारे घर पनीर बनाया था, छोटी वाली बहन ने बकायदा प्यार से दही मटर छोले और आलू मिक्स कर करके बनाया था, लेकिन बाद में पता चला कि आज तो वो उपवास है, फिर क्या हुआ हो जाएगी।
1: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि प्लेन रोटी के साथ पनीर की भुर्जी अच्छी लगती है, जैसे कि तुमने बताया था नहीं, क्योंकि उसमें मसाले कम जाते हैं और पनीर का रियल टेस्ट मिलता है। ये तो सही बात है, मसाले कम डालो तो उसका जो स्वाद है ना वो निखर के आता है।
0: बिल्कुल, और पनीर की बात भी एकदम निराली है, क्योंकि एक जैसा सफेदी लिए पनीर होता है ना, उसको इतना ज्यादा मसाले में डालने में ऐसा लगता है कि कुछ तो बेचारे को हम बहुत परेशान कर रहे हैं ऐसा लगता है ना। हमारे एक साथी जो अलग अलग बातें तो लिख रहे हैं, लेकिन अभी देखिए सब्जी की जो बातें उन्होंने लिखी, आलू सबके साथ चल जाता है,
1: सबके साथ,
0: तो आलू हमें सिखाता है कि हमें उसकी तरह बनना चाहिए कि हम सबके साथ और अकेले भी हमें खाया जा सके, खाया तो नहीं जा सके बट अकेले भी हम चल सके अपने जीवन में और के साथ मिलकर भी चल सके। लेकिन पनीर को हमेशा किसी न किसी चीज की जरूरत होती है ना, खाली पनीर भी खाया जाता है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसे सेक के खाते हैं, भले चाट मसाला डाल के खाते हैं, तो पनीर का जो टेस्ट बढ़ जाता है
1: वो तो है नहीं है, लेकिन पनीर को बैगन के साथ नहीं खा सकते ना, आलू को बैगन के साथ भी खा सकते,
0: आलू को पनीर के साथ भी खा सकते हैं,
1: बिल्कुल आलू को पनीर के साथ और खा सकते हैं, और साथ ही जो बैगन के साथ में आलू खा सकते हो, ऐसी सब्जियां जिनके साथ पनीर नहीं खा सकते उनके साथ भी आलू चल सकता है, यानी कि आलू जीतता है।
0: तो आलू को हम जिताएं, उससे पहले एक अंतराल ले लेते हैं।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली।
1: सखी सहेली,
0: सिर्फ हम आलू गोभी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे संगीत।
1: हाँ बिल्कुल, आलू गोभी की हमने बात कर ली है, अब हम संगीत पे आते हैं। तो संगीत कुछ सुरों का मेल भर नहीं है, बल्कि वो एहसास है जो बिना कुछ कहे दिल तक पहुंच जाता है। यानी कि जब हम गीत सुनाते हैं, जब कहते हैं ना कि हमने कार्यक्रम के बारे में बता दिया, सब विषय बता दिए, अब पहले गीत, यानी कि शुरुआत हम जब कार्यक्रम की संगीत से करते हैं ना, तो पूरा जो कार्यक्रम है वो संगीतमय हो जाता है ना, एक रिदम में आ जाता है।
0: हाँ, और जब हम बहुत देर तक बातें करते रहते हैं तो बीच में एक संगीत आता है, तो एक अलग सी अनुभूति भी होती है, भाव अलग हो जाते हैं।
1: और कभी कोई धुन हमें हंसा देती है, तो कभी वही धुन अनकहे आंसू भी ले आती है।
0: और कभी ऐसा भी महसूस किया हो हमारे श्रोताओं ने कि कोई पुराना गीत अचानक जब सुनाई देता है तो हम बरसों पीछे लौट जाते हैं, वही कमरा, वही मौसम, वही चेहरे और वही अधूरी सी कहानी। संगीत के पास यादों को सहेज कर रखने की एक अनोखी शक्ति होती है, और एक धुन जिसे हमने शायद वर्षों से नहीं सुना है, लेकिन पल भर में अगर हमने उसे सुना तो पल भर में बीते हुए समय का पूरा दरवाजा खोल देती है।
1: कभी कभी लगता है ना, जब कोई पुराना गीत सुन रहे होते ना, तो एकदम से खो जाते उसी में, उस पूरा दृश्य हमारे सामने आने लगता है। तो संगीत खुशी में हमारा साथी है और उदासी में हमारा हमराज। जब हम थके हुए होते हैं, जब हमारा मन थका हुआ होता है, कोई मधुर राग भीतर जैसे धीमी सी रोशनी जला देता है। जब दिल किसी बात से भारी होता है, संगीत उस दर्द को शब्द दिए बिना समझ लेता है। और शायद इसीलिए कई बार हम किसी से अपनी परेशानी नहीं कह पाते, लेकिन एक गीत सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ, यही तो मैं महसूस कर रहा था। बिल्कुल
0: हाँ, तो वो गीत सारी बातें हम तक साझा कर देते हैं। संगीत की खूबसूरती भी तो यही है कि इसे समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है। शास्त्रीय राग हो, लोकगीत हो, भजन हो, या कोई सादा सी कोई धुन हो, हर सुर अपनी तरह से मन को

0: छूता है। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग भी एक ही संगीत पर मुस्कुरा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और बचपन में माँ की लोरी से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक संगीत हमारे साथ चलता है। त्योहारों में भी गीत है, प्रार्थनाओं में स्वर है, प्रेम में धुन है, और विदाई में भी संगीत की एक धीमी सी प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जैसे जीवन की कहानी शब्दों से नहीं सुरों से भी लिखी जाती हो।
0: हाँ, और शायद संगीत का सबसे बड़ा जादू भी तो यही है ना आरती जी, कि हमें हमारे भीतर से मिला देता है। कुछ देर के लिए अगर दुनिया की भागदौड़ जो होती है वो रुक जाती है, आंखें बंद करते हैं और हम अपने ही मन की आवाज सुनने लगते हैं संगीत में डूबकर।
1: और इसीलिए जब कभी मन उदास हो कोई प्यारी सी धुन को आप सुन सकते हैं। हो सकता है समस्या वही रहे लेकिन उसे देखने का हमारा जो नजरिया है वो बदल जाए, क्योंकि संगीत हमेशा परिस्थितियां नहीं बदलता, कभी कभी वो हमें इतना बदल देता है कि वही परिस्थितियां हमें थोड़ी आसान लगने लगती हैं।
0: और संगीत सुनाई सिर्फ नहीं देता है बल्कि महसूस होता है, याद बनता है और कभी कभी जीवन भर हमारे भीतर गूंजता रहता है। और यही कारण है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद और यूनेस्को समाज में संगीत कला को बढ़ावा देने और शांति और भाईचारे के आदर्शों को स्थापित करने के लिए 1 अक्टूबर का दिन संगीत जागरूकता दिवस के रूप में मनाए जाने के रूप में हमें मान्यता मिली है। संगीत को हम इस दिन मनाते हैं या कहें कि जागरूक किस तरह से हो सकते, स्वास्थ्य के लिए भी कई बार संगीत की जो पद्धतियां हैं इस्तेमाल की जाती हैं, जिसे हम अलग अलग रागों से संबंधित अगर आप बातें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से राग को पढ़कर अलग अलग भावों से आप निजात पा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं।
1: बिल्कुल, और कई कई अब तो अस्पतालों में भी एक संगीत थेरेपी भी दी जाती है लोगों को, मरीजों को, जिससे कि वो अपने अंदर से खुश हो सके, उनके अंदर एक उम्मीद जाग सके। तो ये जागरूकता दिवस है। और हमारे जो साथी हैं क्या क्या लिख रहे हैं, एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि संगीत तो मेरी रूह है, जान है, जिंदगी है, जब से होश संभाला है तब से संगीत और गीत सुनती आई हूं, और विविध भारती मेरे रेडियो ट्रांजिस्टर और अब फोन में बजता ही रहता है, मेरे किचन, बाथरूम और आराम करते समय, सोते समय भी बजता है, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन के अंतर्गत आ गई हूं, पर मुझे शुरू से ही पुराने फिल्मी गीत संगीत बहुत पसंद है। और उन्होंने कहा कि केएल सहगल, पंकज मलिक, सीएच आत्मा और हेमंत कुमार, लता रफी, गीता दत्त बहुत पसंद है, आजकल के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ गीत हैं जो उनको आज के भी अच्छे लगते हैं।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे साथी के लिए संगीत का जादू ऐसा जो सिर चढ़कर बोलता है, विविध भारती इसमें मेरी सबसे प्रिय और सहयोगी रही है उन्हें। और एक और साथी कहते हैं कि संगीत का जादू तो मेरे सिर चढ़कर बोलता है, ऐसा मेरे घर के लोगों का कहना है। सच भी यही है, मैं खुश रहती हूँ तो संगीत सुनती हूँ, दुखी होती हूँ तो संगीत सुनती हूँ, बहुत गुस्से में होती तब भी संगीत चलता ही रहता है। हालांकि मेरी मम्मी बोलती घर में कुछ भी हो जाए इसका रेडियो बंद नहीं होता। वैसे आजकल की बात नहीं है बल्कि जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तब भी रेडियो सुने बिना मेरी पढ़ाई नहीं होती थी।
1: बहुत बहुत ही अच्छी बात है। तो और संगीत, एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि संगीत केवल फिल्मी संगीत तक ही सीमित नहीं है, उसको इतना ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर तरफ व्याप्त है संगीत। हवा की रागनी में घुला है संगीत, झूमते वृक्षों में, बहते दरिया में है संगीत, भंवरे की गुंजन में है संगीत, मंदिर की बजती घंटियों में है संगीत, गौरी की बजती पायल खनकती चूड़ियों में है संगीत, आसमां से बरसती बूंदों में है संगीत, पक्षियों के मधुर कलरव में है संगीत। सच में रूह का सुकून है ये संगीत।
0: वाह, क्या बात हमारे साथियों ने कही है। तो इन संगीत से जुड़ी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने भेजी है, पर क्यों ना इस वक्त एक संगीत
1: सुनना ही चाहिए जी।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: और मन झूमने लगता है आरती जी जब संगीत की बात हो। हमारे एक साथी लिखते हैं कि संगीत एक ऐसी अलौकिक कला है जो बिना किसी भाषा और सीमा के सीधे दिल से जुड़ती है। ये सिर्फ सुरों और ताल का मेल नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब संगीत बोलना शुरू करता है।
4: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि जब भी अपने बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस कि जब भी मेरे पतिदेव से जब मैं नाराज होती हूं या गुस्सा होती हूं तो वो मुझे गीत गाकर मनाते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एकदम से खिलखिला उठती हूँ। भाई क्या बात है।
3: और हमारे एक साथी कह रहे कि संगीत एक ऐसा जादू है जो बिना शब्दों के भी दिल की बात कह देता है। इसकी मधुर धुनें कभी चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं तो कभी आंखों में पुरानी यादों की नमी भर देती है। संगीत में मन को सुकून देने, थकान मिटाने और उदास दिल को संभालने की अद्भुत शक्ति होती है। कोई धुन हमें बचपन की गलियों में ले जाती है तो कोई गीत किसी अपने की याद दिला देता है। सुर, ताल और शब्द जब मिलते हैं तो भावनाओं की एक खूबसूरत दुनिया बन जाती है। शायद इसलिए संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। यही संगीत का असली जादू है जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचता है।
4: क्या बात है, बहुत अच्छी तरह से लिखा है। एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि मैं तो लोक गीतों की भी बहुत शौकीन हूं और प्रादेशिक हो या किसी भी भाषा को उनको लोकगीत बहुत पसंद है। तो गीत वो तो कोई भी हो सकता है, लोकगीत हो या किसी भी भाषा का हो, संगीत तो संगीत है फिर। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि जहां शब्द थम जाते हैं वहां संगीत बोलना शुरू करता है। शायद इसीलिए संगीत केवल सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जहां शब्द खामोश हो जाते हैं वहां संगीत दिल की भाषा बनकर बोलता है।
3: तो हमारे कई साथियों ने से एक ही तरह की बातें लिखी क्योंकि संगीत

0: जुड़ी जो भावनाएं हैं वो एक तरह से हम सबकी एक ही है। हमारे कह रहे हैं कि सुर ना सजे का गांव में एक साथी ने लिखा है, सुर के बिना जीवन सूना, संगीत का जादू वो अदृश्य शक्ति और प्रभाव है जो बिना किसी भाषा की सीमा के सीधे मन और आत्मा को छू लेता है। ये भावनाओं को जगाने, थकान मिटाने और लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। संगीत हमारी गहन भावनाओं को व्यक्त करता है जिन्हें कई बार साधारण शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। तनाव भरी भागदौड़ के बीच संगीत सुनने से मन को असीम शांति और ताजगी मिलती है। पुराना संगीत सुनते ही इंसान पल भर में अपनी पुरानी यादों और बीते हुए पलों में पहुंच जाता है। संगीत की कोई भाषा नहीं होती, ये हर संस्कृति और देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोता है। लेकिन यहाँ आरती जी एक बात कहना जरूरी है कि भाई संगीत तो बहुत अच्छा लगता है, हम सुनते भी हैं, पर ऐसा नहीं हो कि हम जब सड़क पे जा रहे हैं तो संगीत कानों में हमने लगा लिया, हेडफोन लगा लिया और हमने सोचा कि चलो सुनते सुनते ही जाएंगे आज हम, और उस वक्त संगीत आपको अगर कहीं किसी दूसरी दुनिया में या किसी दूसरी यादों में आपको खोने के लिए मजबूर कर देगा तो सड़क नहीं, पर नहीं, आपका चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
1: बिल्कुल, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, थोड़ी सावधानी, ये भी कोई भी चीज सावधानी के साथ अगर करी जाए तो बहुत अच्छी होती है। तो सड़क पे चल रहे हैं या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप संगीत को थोड़ा देर रोक दें, तो वो आप जब कहीं बैठे हैं या कहीं आप आराम से अपने घर में या इस तरह से कभी हैं तो आप वो तब सुनिए कहीं, लेकिन बाहर जाते समय या रेलवे स्टेशन में, कई लोग ट्रैक पे जब चलते हैं है ना, ट्रेन की वो पार कर रहे होते हैं रेल लाइन के, तो वहां पे भी आप ये सब मत लगाएं तो अच्छा रहता है, नहीं तो बहुत सारी दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है।
0: और अगर आप सार्वजनिक स्थान पर हैं और सफर कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपने एकदम जोर से जो लगा देते हैं ना संगीत की भजन, आप भजन भी सुन रहे हो, चाहे कोई बहुत ही अच्छा संगीत भी आप सुन रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि किसी और को भी वो संगीत पसंद आ रहा हो। और तेज आवाज में जब संगीत चलाया जाता है तो कभी कभी जो उसकी जो खूबसूरती है वो खो जाती है, तो वो भी आपको उससे भी बचना चाहिए
1: और अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों को भी हो सकता है, किसी को खराब या किसी को परेशानी हो रही हो, कोई बीमार हो या कोई परेशानी हो सकती है, तो संगीत को उतना ही सुनिए जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो।
0: तो संगीत को जो मधुरता उसकी है उसकी मधुरता बनी रहे, बस इसका ध्यान रखना चाहिए,
1: जैसे लड़ाई झगड़े ना हो। और दूसरी चीज है कि आप, क्योंकि आप बाहर लगा, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं उस समय आप तेज आवाज में सुन रहे हैं तो हो सकता है दुर्घटना का कारण बन जाए, कोई सामने वाले को किसी को परेशानी हो जाए, तो आप चीजों को ध्यान में रखते भी आप संगीत को सुनिए। और एक हमारे साथी है जो लिख रहे हैं कि संगीत केवल सात सुरों का संगम नहीं है बल्कि आत्मा की भाषा है जो बिना किसी शब्दों के सीधे दिल तक पहुंचती है। बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने भी।
0: बिल्कुल, ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे जो साथी हैं उनकी भावनाएं और हमारी भावनाएं बिल्कुल मिल रही है आपस में, क्योंकि एक तरह से संगीत के लिए अगर कहा जाए तो कुछ यही बातें हम कह सकते हैं जैसे भावनाएं हमारे साथियों ने भेजी हैं, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर, मतलब हम दोनों कहने का ये अर्थ है कि हम सब मिलकर एक गीत सुन लें।
1: बिल्कुल, गीत सुनते हैं संगीत के समय।

0: इश्क है।
1: तो आरती जी ये बातें तो हो गई, लेकिन एक जो सबसे जरूरी बात है वो तो हमने की नहीं।
2: कौन सी जरूरी बात नहीं की हमने?
1: इतने सस्पेंस आपने ले आया। लेकिन वृद्धजनों की देखभाल के उपयोगी टिप्स जो हमें देने थे और हमारे साथियों ने ढेर सारे कमेंट्स के जरिए
2: उसी पे आ रहे हैं हम लोग, उसी पे तो आ रहे हैं अब। और क्योंकि हमारे साथियों ने कितना सारा तो लिख के भेजा है, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, तो हम ले लेते हैं अपने साथी का पहला कमेंट जो लिखते हैं कि सभी को वरिष्ठ नागरिक दिवस पर शुभकामनाएं दे रहे हैं और हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। वैसे देखा जाए तो इन्हें स्वस्थ और हर हाल में खुश रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है, पर आजकल के जो युवा वयस्क हैं वे तो समझदार हैं पर इन्हें शायद और जागरूक होने की जरूरत है। वरिष्ठ नागरिकों को आदर सम्मान और हर तरह से उनका ख्याल रखने की जरूरत है। एक तरह से नई पीढ़ी उनसे बहुत कुछ सीख सकती है, उनके पास बहुत सारे अनुभव तो होते ही हैं।
1: और हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे घरों में कहा जाता है बुजुर्ग हमारे दरवाजे की शोभा होते हैं, तो उन्हें अपनी शोभा बनाएं, घर के कोने में पड़े हुए शोपीस नहीं बनाएं। और एक और साथी कह रहे हैं कि आज का दिन बुजुर्गों की देखभाल और उनकी देखभाल की जागरूकता के लिए मनाया जाता है, तो उन्होंने इसकी हमें बधाई दी है।
2: अच्छा, और साथ ही हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि मेरे मम्मी जो 83 वर्ष की आयु की हैं वे मेरे साथ रहती हैं और वो वॉकर से चलती हैं और उनको मतलब खाने में परेशानी होती है क्योंकि उनके दांत भी नहीं है। तो लिखते हैं कि मेरी वाइफ उनको सब खाना क्रश करके मतलब पीस के देती हैं, उनको ब्रश स्नान जैसे सारे कामों में हेल्प करते हैं वो और दवाई वगैरह सब अच्छे से देते हैं। ये सब चीजें उनकी है कि पूरी चीजें सब काम करते हैं उनका। उनके पास सादा कीपैड का फोन है, उनको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, तो मैंने अखबार लेना और टीवी से केबल मतलब उनको कनेक्शन चालू करवा दिए ताकि उनका टाइम पास हो और दुनियादारी से वो अपडेट रहें। तो उनसे वो बात करते हैं जब शाम को अपने जॉब से आते हैं तो वो बात भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने साथ में अपने जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो बुजुर्ग हैं उनके साथ में बैठना, उनके साथ बातें करना, खाना पीना, यही चीजें हैं बस देखभाल के लिए, और कुछ आपको नहीं करना होता है कुछ ऐसा।
1: हमारे साथी वही कह रहे हैं कि बुजुर्ग होना कोई अभिशाप नहीं बल्कि ये जीवन का एक सम्मानित और सुंदर पड़ाव है जिसपे अनुभव की परिपक्वता और गरिमा होती है। बुजुर्गों के पास जीवन का लंबा अनुभव और ज्ञान होता है जो आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है। वे हमारे समाज की अनमोल धरोहर है जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से परिवार और समाज को सींचा है। हर उम्र की एक गरिमा होती है जिसे हमें ईमानदारी से स्वीकार करके खुशी से अपना कर जीना चाहिए।
2: बिल्कुल। एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि वृद्धजनों की देखभाल की बात मैं क्या करूं जब मैं खुद 75 पार कर चुका हूं और घर में तो सभी दादा कहते ही हैं। अब विविध भारती फेसबुक पेज पर जुड़े हमारे सभी साथी भी दादा कहकर पुकारते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। घर के सदस्य सभी मेरी अच्छी देखभाल रखते ही हैं, बाकी मैं खुद अपनी देखभाल रखता हूं। रोज सुबह विविध भारती जागो सुबह हो गई सुनते हुए व्यायाम प्राणायाम कर लेता हूं, शाम को इवनिंग वॉकिंग करने जाता हूं और रात ढलती जाए रात सुनते हुए शुभ रात्रि हो जाती है अभी। और अब मैं अभी सखी सहेली शुरू होने से पहले एक छोटी सी झपकी ले लेता हूं। तो अपनी झपकी से उन्होंने देखिए झपकी भी अपनी तोड़ी और हमारे लिए लिखा भी उन्होंने, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और हमारे साथी ने लिखा है कि वृद्धजनों की देखभाल उनके शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक शांति और भावनात्मक जुड़ाव का ध्यान रखकर पूरी गरिमा और स्नेह के साथ करनी चाहिए। बुजुर्गों की सही देखभाल के लिए मुख्य बिंदु उन्होंने बताया कि रक्तचाप मधुमेह और अन्य पुरानी बीमारियां अगर हों तो समय समय पर जांच कराएं, डॉक्टर जो निर्देश दें उसके अनुसार उन्हें दवाई दें, भोजन में प्रोटीन विटामिन डी कैल्शियम ताजे फल और हरी सब्जियां शामिल करें, पानी की कमी से बचाने के लिए उन्हें समय समय पर पानी पिलाते रहे और इसके अलावा सबसे बड़ी बात उन्हें अकेला न रहने दे। कुछ कमियों के बावजूद परिवार में एक सहारे के साथ बहुत खुश रहते हैं हमारे जो वृद्धजन होते हैं, तो उन्हें बहुत लग्जरी सुख सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि प्यार और देखभाल सम्मान की जरूरत होती है।
2: बिल्कुल, वो सम्मान आप प्यार देते हैं तो बस वो देखभाल हो गई, इससे ज्यादा बड़ी देखभाल तो और क्या होगी जब आप उनके साथ थोड़ा सा समय बिताते हैं। तो इसी के साथ एक छोटा सा गीत सुन लें।

0: शुक्रिया।
1: तो बहुत शुक्रिया हम किस लिए कह सकते हैं कि हमारे साथी चाय को पसंद करे, कॉफी को नहीं।
2: वैसे आज कॉफी दिवस है लेकिन हाँ। चाय ने बाजी मार ली है।
1: कोई बात नहीं, हमारा आलू भी जीत गया। आप आपकी चाय जीत गई तो कोई बात नहीं, हमारा आलू भी जीत
2: आलू भी जीता है।
1: और हमारे एक साथी लिख रहे कि चाय मुझे बहुत पसंद है, सुबह ब्लैक कॉफी पीता हूँ। देखो कॉफी पी रहे हैं वो, और कह रहे नाश्ते के बाद दूध वाली चाय। इतनी चाय की बात हो रही है, अभी कोई आया तो चाय तो मुझे बनाना ही है, कॉफी ज्यादा पी लेता हूँ खासकर शाम को, तो रात को मेरी नींद गायब जाती है। मतलब मिली जुली सरकार चल रही है, इन्हें कॉफी और चाय दोनों पसंद आ रही
2: है। तो एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि मुझे चाय और कॉफी दोनों पसंद है, आइस टी भी पसंद है इनको, और ये जो भी चीजें बनती हैं घर में खा लेते हैं। इन्होंने बोला ये टिंडे भी खा लेते हैं, इन्होंने सब्जियों के बारे में बताया कि ये सब्जियां भी स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। तो भरवा टिंडे, भरवा शिमला मिर्च, और सच बोलूं तो करेले की सब्जी भी फेवरेट है। क्या बात है, सच में
1: कुछ हमारी टीम के लग रहे हैं। और हमारे एक साथी ने कहा मुझे चाय बहुत पसंद है, जब भी कभी यार दोस्त मिलते हैं तो चाय की चुस्की तो होती है, बैठे बैठे गप्पे हो जाती है, और इस बीच कुछ खाने को हो जाए तो कचौड़ी या दाल मंगोड़े की बात ही क्या। मतलब प्रोग्राम के बीच में अगर खाने की बातें होती है तो हमें ऐसा लगता है कि अभी हमें जाके चाय पकौड़ी कुछ खाना चाहिए। अब हमें ये सोचना भी पड़ेगा कि घड़ी भी आज हमारा साथ दे रही है, तो घड़ी भी ये इशारा कर रही है कि हम जाएं चाय पकौड़े खाएं, कॉफी भी पी सकते हैं।
2: कॉफी आज तो कॉफी पियेंगे, आज तो कॉफी पियेंगे क्योंकि आज कॉफी दिवस है, तो कॉफी तो पीनी ही पड़ेगी हमें।
1: तो ये भी बताते चले कि कॉफी दिवस अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने 2015 में पहली बार मिलान में इटली में इसे मनाना शुरू किया था उन्होंने, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो लाखों किसानों और श्रमिकों का समर्थन करना था जिनकी आजीविका इस फसल पर निर्भर करती है। और फिलहाल ये निर्भर करता है कि समय तो कह रहा है कि बिल्कुल अब आप अलविदा कह दें, तो स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा
2: और आरती श्रीवास्तव का
1: नमस्कार।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह।

0: दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू अय्या।

0: हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है, कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करो।

जान हो दो आलम की और जान हमें पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे

मदरसे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए, प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए, प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था।

आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन।